0: कुलास तुमको वाफी
1: रे फामियांस नुल्ला नुना तिम्यासन दिक्यां जाया आर मनां प्यासियां र तेरे कड़े ते तंबाउप शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान जानिया तिम्यास फात्मियात्से शकुर फामियासा अम्फापंसुना आर मियासा न्यापंदिया निफितुंड्रान मातेत्या मायनो निबात्यान फरानिस नांगना आर निसन ताकेंतिफा नफोसांतिया रानिस फोलुने कोलोनेल मिकाएला फारुआन मालाकास मेरामेंजा आर साचिकेन उम्तेनेंजान चिशाबकन्यांदांजान चिशाबकनिस लुतेंजान्या फजान मजावा जान तोम ततारं तिफिरेनेंती कदेमानोंचावं तिकेरेटारेट सिमाइस्तातेरानं फानवाना सिफानावोजने तोम तिफिरेनेंती Timur zany, sarotra zany, ka nefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony tanterahantsika. Ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy dia tena manampy marina niteraka vokatsoa an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम काफी।
1: सूत सूत सानने रे जगल मंदे मंती तुम मत कास करन पिसले तुम सब तुम चला रे नाना का तीन नाना का काम रे ते तीन नाना के आनो ना फिक्री जानी जलू रिस्क के जान कों को रिस्क के जान को ये जन दे जान मंती तुम मत कास कर जान ये जन के रिस्क सान पा ना जब फिक्री जान मु उतन मान लेकिन फिर से लेन देसाना को दे मना रखा ना वो सेमु सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मना रखा ना तेंदे ये देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांस मिरी जाने सेम जब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु पफतारा कौन सा ये ले फिर ना काफी ना जाने मार सुत सा वो ना चार चार ले तीनों रोप ये करने के नंबर चुना ये ना जाने
3: ये सुत सान ले वचने के ते मत आकाश क्या रा सुनना ला को ले सुत तुम आते थी ये सेना वातार पे सुत जिस चीज में आपसे लेता सुत सान से ले सुत सुत पे ना काफी ना टीम याना कर सारे तुम आते थी ते वाला सा सीज़न सोच सोच मोला ला सा चेक नहीं सेंच साझा मापा ये रेना जब यान जमाता नहीं मापता ना जरा के सेता ये तांज ना तुम तुम्हारा ने
4: पहना काफी ना सुत ले ले उल्ला ना दे तुम Apa ni? Tiko nak kene ciri arah, tempir nane tiko. Arah kan panrinwe teh itu tamata kaskar. Teh sutun mitu san. Ye fakih reza nawasre teh mafnasha neto nareu apa teh nawe makafit ku anti lus mamcik ti zai teh nawe semana sal ti san ye. Ye cuma benyani jalan pamanan nane tika manukan cik.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.